People went to sleep, and 2 o'clock he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like yogis, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this, and he was doing half hour like this. My Lord Shiva, come to me. Come here, my dear Lord Shiva. In my heart, I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out, sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. बाबाजी गांव के अंदर आए, देखा कि शंकर का मंदिर, पुजारी को कहा कि रहने के लिए जगह है, कि ये कमरा है साधुओं के लिए, वहां रुक गया। शाम को आरती में आए, भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी, सोने की, करीब 5 किलो की। आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है। बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं। कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं, पार करें। रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया। 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं। घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए। 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा। टेम्पल डोर वॉज ओपन, शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार। ही रेंग द बेल लॉन्ग एंड द विलेज पीपल वेर रनिंग कमिंग, वॉट हैपन्ड। स्ट्रांग पीपुल लाइक जसराज जी एंड प्रेमानंद जी एंड दे वेर रनिंग केम, वॉट हैपन पंडित जी, स्टेच्यू इज स्टोलन। Do you know anybody? I don't know any. If I stay anybody here, one sadhu is staying in the room. They went there, there's no sadhu. They took the torch light, they saw the steps running. That time was no concrete, Sisi road, you know. There was only sand road. Sandy road, so young people were running. And Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए, देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई। पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर। कोई यहां आए थे क्या? बोला कि महाराज रुके हुए, और कोई नहीं है। जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं। बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए। उस समय ये सीसी रोड, डामर की रोड होती नहीं थी। किधर भगा, देखा उनके पैरों के चिन्ह, तो बहुत से लोग उधर, जवान लोग दौड़े। जाते जाते 4 बज रहे थे और प्रभात हो गया, भोर हो गया क्या? नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, गाते हो कि नहीं?

पाव। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहा जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता। बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं। बाबा

अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया, तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। तपस्या थी पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते। आ तू जल्दी कर, स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन्ड, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। डॉन केम एंड द बाबाजी लुक बिहाइंड, दे आर रनिंग सम बॉडी बिल्डर्स। नाउ व्हाट टू डू, इफ आई विल टेल, बाबाजी थिंकिंग that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work, sweating, and so many hours already, nearly 18 hours, after eating, that the food of the thief was digested and sweated out. Again, normal intellect appeared. What to do? Luckily, there is always luck in bad luck. There was a beautiful lake. So he ran into the lake and began to bath the Lord Shiva. And people came, thief, thief. He said, stop, silent, don't talk. Lord Shiva came in the night to me and said, so many years I did not bath. The village people prisoned me in the temple. Please, Swamiji, can you help me to bath? So I promised him, before sunrise, we will bring you back to your holy place. So come quickly, wash him. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Harar Gange Mahadev, Harar Gange, Gange Gange Harar, Bhole Shambhu. Come on. Whoever was giving water, washing the Shiva, running back and brought Bhagavan Shiva statue, fixed there, and begins to do aarti.

से प्रेम का प्याला प्रभु कब मेरा। गुरु जी सेड देयर इज नेवर एंड फ्रॉम दिस डिवाइन नेक्टर डिवाइन लाइट एंड इज सो स्ट्रांग। सो आई सेड गुरु जी कैन आई गिव यू वन सजेशन। गुरु जी सेड यस। आई सेड देन डोंट इमेजिन महाप्रभु जी हियर इन आज्ञा चक्र बिकॉज यू गिव टू मच टेंशन हियर। गो इन द हार्ट एंड हैव हिम इन द हार्ट। ओके व्हाट गुरु जी सेड। ओके नेक्स्ट डे व्हेन आई केम गुरु जी सेड महेश You confused everything. I said, what? I transport Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anaha Chakra. Now, this settlement from transport from Jadan to Khatu is not so easy, you know. You have to make many things. So today, I was nearly confused. I mean, Agya Chakra or Anahat Chakra or Agya Chakras? So, but I asked him, have you the headache? He said, no headache but confusion. Better I should have a headache than such a feelings. So, but after some time, Guruji said to some people, Mahesh have transferred Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anahat, from Agya Loka to Anahad Loka. But he said he have still his sabi. Then what he said, he held the lotus feet of Mahaprabhuji in the heart and his divine light in his Agya Chakra. Very different seva, different things. Then Guruji said when he was doing the Mansik Puja, how from the beginning, early morning when Mahaprabhuji got up and all sevas what Guruji did, he was doing exactly the whole seva 1 hour. Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. अगर कोई पापी का एक भी दाना आ गया तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग दिया जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लगता है मेरा। हे प्रभु हमें महाप्रसादी ही दीजिए, ब्रह्मार्पणम। हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता, तो 3-4 बार गुरुजी फरमाए बोला। तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान? तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा। महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है। तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा? तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा? तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप।
दूसरे दिन आया तो बाबू जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी मैं, क्यों कि महाप्रभु जी का ट्रांसफर कर दिया अनाहत से आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो। मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को यह अनुभव होता है, गुरु जी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है, वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच ही नहीं रहा है। खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए। अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो, इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा, अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसफर नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंह नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भरसी। दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमया कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स, विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड, देन दिस radiance, the resonance, when this is purified, then you are beyond this all material vibrations. From you is only divine radiance is coming. And anyone who comes closer, sits around you, go around the temple, you are in this abhamanda inside. Deep Narayan Bhagwan ki, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की, अलग

0: ओहम सगुण ब्रह्म सिद्धि परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म सिद्धि परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयनंद सूर्य गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You're here.
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

देवादिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

द्वेष महादेव की जय। हिंदू राम समरत सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। आज की आनंद की जय।

0: सतगुरु स्वामी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: Pueden chamarte a él,
1: it's there. Okay, we are starting. Shadeep Nam Bhagwan ki jai. Ashman ya Pavitra Pavitra?
0: Jai. Ashman. Om Keshavaya Namaha. Om Keshavam Maam Puranatu. Om Narayanaya Namaha. Narayanam Maam Puranatu. Om Madhavaya Namaha. Madhavam Maam Puranatu. Hasto Prakshara Shri Keshavaya Govindaya Namo Namaha. अग्नि ज्योति ज्योति रग्नि ही स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति ही सूर्य जहाँ स्वाहा अग्नि वर्जो ज्योति वर्जो हाँ स्वाहा सूर्यो वर्जो ज्योति वर्जो हाँ सूर्य जहाँ स्वाहा भगवान को दीपक दिखा कर
1: वगैरह कुछ करना है आश्रम वगैरह सब हो गया
0: ले लीजिए आश्रम वगैरह हो गया उसी आसन से तो यहाँ आवश्यकता नहीं अभी पूजन से उठ के आए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अग्नि देवता का आवाहन करना मतलब प्रणाम करना है ओम अग्नि दूतम पुरोत देहव्यवाहम उपप्रवी देवा आसादयादिया बुद्वस्व अग्नये नमः ध्यानम देहार्थे पुष्पम अक्षताम च समर्पयामि नमस्करोमि कुंड के बाहर ही इसको चढ़ाई बीच वाली जो सीढ़ी है भूर्वस्व अग्नये नमः ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतां पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि थोड़ा सा जल से अभिसिंचन कर दीजिए कुंड के अंदर थोड़ा सा जल से ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिबाल साश्विन श्वेता श्वेताक्ष और से रुद्राय पुषुदे प्रणाजामा अवलिप्ता रुद्र अनुपा अपार जन्या जो ये लोग बैठे हुए हैं इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल और जो पूजन की जो सामग्री है इसमें थोड़ा थोड़ा जल पुष्प से लेकर के सभी जगह चढ़ा दीजिए मुखमिया सर्व देवानाम भावे भुक्त विभुक्त तथा पितृणाम जय नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने इस श्लोक में बताया गया है कि अग्नि देवता कैसे हैं चत्वारि श्रृंगा उनके जो अग्नि देव हैं उसमें उनके चार सिंह हैं त्रयो अस्य पादा उनके तीन पैर
1: इट इज सेड इन द शास्त्रस दैट ही हैज चार क्या है
0: पैर चार सिंह हैं उनके
1: सिंह या सिर
0: String, sir.
1: For not string, it's a Sanskrit word for heads. So it is said in this mantra that fire god has four heads.
0: Trayo asya pada, teen pair hain unke.
1: Three legs.
0: Dve shirse, do jo hain unke sar hain.
1: To char kya the pehle?
0: Sting nahi hote hain, sting.
1: Okay, four horns, three. Legs and two heads.
0: Saat haath hai unke.
1: Seven hands.
0: Aur saat hi jihvaen hain.
1: And seven tongues.
0: Jisse wo havan grahan karte hain.
1: With which he receives what we offer him.
0: Wo Mahadev ke bahut hi zyada anant priy hain.
1: And he is very loved by Mahadev, Shivji.
0: ऐसे जो अग्नि देव हैं उनको हम प्रणाम करते हैं
1: एंड टू दैट अग्नि देव टू दैट फायर लॉर्ड वी मेक प्रणाम
0: और वो हमारे जो हम भी हवन कर रहे हैं तो उसमें जो गलतियां हों उन्हें क्षमा कर हमें हम जो भी प्राप्त हुई जो हमारी वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करें
1: एंड
0: हमें हमारे कर्तव्य पालन में मार्गदर्शन दें
1: वी आर प्रेइंग टू अग्नि देव टू फायर लॉर्ड दैट व्हाटएवर mistakes in chanting or in offering we will do in this yagya we're asking for forgiveness and whatever we can with our shakti bhakti vairagya whatever we are offering please accept it and fulfill all our wishes which we asked you for
0: जो पांच तत्व हैं उन पांच तत्वों से हम सारी चीजें ले रहे हैं जैसे वायु है तो वायु से हम सांस ले रहे हैं जल से जल ले रहे हैं
1: all the five tattvas we are taking something from the air wind we are taking breathing from water we are drinking water
0: तो जो पांच तत्व हैं उन सभी पांच तत्वों को प्रणाम करके उन सभी को ये निवेदित है
1: and whatever we are offering we are also offering them
0: आगे प्रारंभ करते हैं हवन की प्रक्रिया थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के ध्यान करना है,
1: Now
0: नवग्रह जो देवता है,
1: we are doing dhyana, we are meditating to all the nine ग्रह, nine planets.
0: Planets. ओम कृष्ण वर्तमान निवेश
1: back and let it be, later we'll clean up the mess.
0: क्योंकि भगवान के दो पुत्र हैं, धर्म और अधर्म. भगवान के धर्म सामने तरफ रहते हैं और अधर्म पीछे रहते हैं.
1: There are two sons of God, one is Dharma and one is Adharma. Dharma is in front and Adharma is in the back.
0: तो दोनों को आहुति मिलती है, जो अग्नि के अंदर जो आहुति जाती है वो धर्म लेते हैं, और अधर्म को जो पुण्य के बाहर जाती है वो अधर्म.
1: So the thing which is going in the fire is for Dharma, and those which is just falling out is going to Adharma, so that both sons can fulfill that.
0: हमारा प्रयास ये रहे कि हम अंदर ही डालें, जिससे धर्म की वृद्धि हो और हमारे गुरुजन जो स्वस्थ हैं.
1: And we should try that it goes more inside, but that it goes for dharma and less for adharma. But if it goes out, it's okay.
0: ठीक है, आगे प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे. ओम गुरुवासु गणेशाय स्वाहा.
1: स्वाहा.
0: एक कटोरी में जल लेकर के सामने रख लीजिए आप. चारों दिशा थोड़ा थोड़ा वहीं से बैठे बैठे द्रव्य दक्षिणा इसलिए हम चढ़ाते हैं, कदाचित जैसे जो हम सामग्री लेकर के आते हैं उसमें जो दोष हो अथवा उसके अतिरिक्त जो भगवान को प्रिय हो, तो वह उससे उसकी पूर्ति हो जाती.
1: The reason why we offer dakshina or money is because if we couldn't find something or there was some shortage in any type of samagri offerings or things that we bought, then that covers that in that way.
0: क्योंकि पहले जो दक्षिणा होती थी वो धातु की होती थी, और
1: धातु हमेशा
0: पवित्र होती है, जैसे सोना चांदी.
1: In the olden times, the way of dakshina used to be any type of metal like gold and silver, because that was pure. But nowadays we don't have that, so we use money. I mean, we have it, but we don't want.
0: तो उसके हिसाब से हम ये देवताओं को प्रणाम करके थोड़ा सा अक्षत लेकर के जो भी आपने देवी देवताओं को बुलाया है उनसे प्रार्थना करने हैं, आपके आवाहन पूजन में हमसे जो गलती हुई हो, जो कम अथवा ज्यादा जो सामग्री चढ़ गई हो, उन्हें क्षमा करके हमारे जो गुरु जी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, और हमारे जो भी विश्व में जो भी हमारे शिष्य इत्यादि हैं उनको उत्तर उत्तर वृद्धि देने की कृपा करें. इनको सबको समझा दीजिए.
1: Now, whatever we chanted, or if we did any mistakes, we will ask for forgiveness from Gurudev, from Fire God, from Shivji, from everyone, and we will pray that all the world is remaining in peace and unity, good health for Swamiji, and whichever wish you ask for in your inner minds when taking the Sankalpa, that they come true. We are going to pray for that. Papoham papakarmaham papatmaham papatmaham papasambhavam trayimam parvatinatha sarva papaharohara mantrahinam kriyahinam bhaktihinam sureshwaram yato jitamaya deva paripurnam tadastume aparanam najanami najanami tavarjanam pujam chaiva najanami kshamyatam parameshwaram
0: yantu devagana sarve pujam adaya namakim तत्र गच्छ उदासना यत्र ब्रह्मादय सर्वे तत्र गच्छ उदासना पूर्वस्व सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः.

देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय,
1: ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: ओम शलभपुरुष महादेव की जय,
1: जय।
0: देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय, श्रीदीप नारायण भगवान की जय, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ, सल्यूटेशंस टू श्रील पुरुजी सिद्धपीठ परंपरा। माय डॉनर प्रणाम स्व बिलव्ड गुरुदेव, हिज हॉलीनेस विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद गुरुजी। ओम नमो नारायण टू द ऑल द सन्यासीज प्रेजेंट हियर एंड हरि ओम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बिफोर जालन यूज टू बी मेजॉरिटी ऑफ ऑरेंजेस, नाउ वी आर मोर ऑफ बनानास, इट्स गुड। गुड बैलेंस, अदरवाइज वी आर ऑलवेज फुल, मेजॉरिटी इज ऑलवेज द ऑरेंज पीपल। So as you know, a few days back I went to the Mahasamadhi of Gita Bharatiji. Many of you saw her, had her darshan, met her in various places. I think in 2016 or 17 she was also here in Jadan. There was some program going on and there was a tent near Mataji Samadhi. And 15, 1 year before Kumbh. Okay, 2015. And then after that we had her darshan in Kumbh Mela 2016, Ujjain. I think that picture is from there, where Mataji is there and Swamiji and Gita Bharatiji and Vivek Puruji. So in Kumbh also she was very kind, and her disciples, she also has many kids. She has, I think, 12. Now when I went for the Samadhi, I saw 12. Many, like, you know how I came to Swamiji, like that many children are given to her. So they are like, the oldest one, she who